0: की जेमर सुर संगीती सदन बख्श
1: श्री शादी को
0: ये जगह का नाम है सिंधी पत्र श्री शादी को ये जो दमुला वाला हमारा